है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का।

कॉस्मेटिक गाजियाबाद मेगामार्ट अस्पताल रोड बानी अलहरम मेगामार्ट अस्पताल रोड बानी फैंसी कॉस्मेटिक आउदीन इलावा जमंग आसमानी प्रोडक्ट्स बता सोले तलाश की हम मिलावे देशी ग्रीन वैली कॉस्मेटिक्स वाला सारा दरोड़े की ग्रीन पैलेस फार्मेसी कश्मीर स्वीट एंड बेकर्स वाला सारा पुख्तनख्वा के एशियन बेकरी वाला सारा मेन बाजार दरोड़े की जी रबाद के अनान हाई फरमाल खाल के तासुल हक मार्ट मुंडा के पाक अफगान बेकरी नसीम मेडिकल स्टोर वाला मैदान के अरशद अली कॉस्मेटिक वसत सुपर स्टोर मेन बाजार कोम्बट रोड बानी खान लाल किले की बेबोल बाजार के कुरेश जन स्टोर थाना मलकन की बुआ जन स्टोर बरीकोट के तासुल लाहौर कॉस्मेटिक ऊंच बाजार के सलीम खान कॉस्मेटिक और नसीम खान जन स्टोर खान ताकूट की उसामा कॉस्मेटिक्स वाला सरा अपर दीर किस्म का आवाज सुकुरी वहीद गुल कॉस्मेटिक अनुशार रिपोर्ट कासिम रहमान कॉस्मेटिक आउदी सर सरा बरवल किस्म का आवाज सुकुरी परमान कॉस्मेटिक्स वाला सर जी बेशाम की नेमत कॉस्मेटिक अलूज बाजार खान शाह सुपर स्टोर मेन बाजार बेशाम शाहजी सुपर मार्ट मेन बाजार बेशाम शाह फैसल कॉस्मेटिक शमसुल हक मार्केट मेन बाजार बेशाम आओ से बस जुमंग आवाज कदा वक्त सुकुरी मेशक के लिए किनाज मोहम्मद लाला सरा आओदा का चांदी अकूड़ा खटक खड़ बाजार मोती बाजार की जी जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट आसो पे इंतजार जी वाहिद कॉस्मेटिक नवीद कॉस्मेटिक नसीर कॉस्मेटिक लाल मोहम्मद कॉस्मेटिक फ्रेंड्स कॉस्मेटिक और कारी सुलेमान कॉस्मेटिक्स वाला सर जी अपन अंतर को किस्म जमंग आवाज कसो को जी कामरान मोबाइल वाला सरा शाह खालिद कॉस्मेटिक्स वाला सर हम जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला खजमंग आवाज का दशपी जमंग आवाज सुख जलमी रेडियो और अगब इनशालाजनी मकी जमंग आवाज तासुलरसी हाँ जमंग आवाज अलता मन कथरे बंदे औरजनी मकी इन दशपी जमंग आवाज जरूर रसीगे हाँ चूंकि दागी सिस्टम के इससे मसला था इंशाल्लाह जमंग आवाज बदल रही बहरहाल एफएम 103 माने हम जमंग आवाज सासु रशपी और इधर लेशिया खमो खमो सेनु की जमंग आवाज सासु पर जलमी रेडियो और रशपी और मैं गसीनु की जमंग आवाज सासु पर एफएम 103 कश्मीर रेडियो बली का बिल्कुल बरा हैरान दशपी लसुना यो लसुपुर और इधर लेशी खा जमंग आवाज का दवा किसे बनु की सुकुरी सराय नोरंग की लकी मरोद की अंबीरी कला की आज यकीनन जमंग आवाज का दवा की डी खान पहाड़पुर सराय नोरंग आओ पिशावर की तमाम पिशावर की द उमर फार्मेसी सोनो ब्रांचेस जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स अलतम मौजूद बस आसमानी नुमपिता सुगुरी का खेश को की जमंग आवाज सुकुरी अटक के खैराबाद के फतेह जंग के हजरों की पुरन शांगला के इफ्राबाद की मानसियरा की असुआत की दरगाह की चकदरा की अटक की मीराबाद की हरिचंद की जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट सासु पे इंतजार इंशाल्लाह कभी वफा सगन वफा का जुन वफा का सबाब रिजन दी पारी सबाब यो खिस्सा खुली प्रोग्राम सरा सासु पे खिदमत की हाजिरी की तरकी दम पर इकबाल रोड डॉक्टर इसरार जल्ला इजाजत तुर्की दलो अल्लाह फमान आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: ओह खुदाया, वादरा ने देश और जामो ही पता होने लगेगा। टोल बाजार में चांद करो और दस रखो की सुटून मुंतल और चर्त ची डिजाइन लिखे हुई अल तब बीही आसमान सर खबरें गई उधड़े में वही चिचरत लाहौर या पे खबर तलाड़म
1: खुश खबरी बटग्राम दुकानदारानुला और उदा करेंगे आमो खलकुला ओस पे खबर और लाहौर तदतलो जरूरत निश्त दे दिल तासुर टोलू ता बेहतरीन क्वालिटी अगा मिला भी दिलेशी अवाल ता वली जी औजान वली तंगवई कलच राम क्लाउड हाउस बटग्राम किश्ता नो दबल जे गुख्तन सदा
0: राम क्लाउड हाउस बटग्राम खहा अल तसिश्ता
1: दहर जा दवस मुताबिक दवदुनो औखादियो द जामो गोर पैकेज नश्ता मसलन दहगुई द पिंजो सुटुनो पैकेज चिपुखा पिंजे दिश दर रुपए वो उस यवाजी पश पार्टस निम जर रुपए की दी चिपके द खादे बकायदा कालीन मरीना खास सूट टिश्यू और प्रिंट शामिल दी
0: वावा द हुडी रहा मामला दा बल से पैकेज उमश्ता
1: आओ वलीना दहगुई बल द तो सुटुनो वाला पैकेज दी चिपुखा पिंजो पंजो जर रुपए वो होस यवाजी पर पिंजो देर जर रुपए की मिलावेगी परे की शादी फ्राक निकाह सूट अड्डाना टिश्यू डिजाइनर काटन सूट लॉन प्रिंट स्विस मेहंदी सूट वन पीस लॉन और दासी नोर शहाना काली शामिल दी
0: रिख्तिया दासी आला क्वालिटी प्रीमियम स्टाइल और दुमना मुनासिब कीमतुना या इंतजार से लपारा राजा ची हम उस लाड़
1: जी नो पता याद साथ ही राम क्लॉथ हाउस नसीम मार्केट बटग्राम और द्वीम ब्रांच दे लेडीज मार्केट बटग्राम नोर मालूम दपारा या ऑर्डर दपारा पदे नंबर हुमा राबित कवली शे 0356-75-501 और बल नंबर दे 0356-95-022 राम क्लॉथ हाउस सासु दखा दियो और रंगुनो जामेन।